0: जो सास ग्रास धियाए मेरा हर हर सोबर से क्यों बोलूं मन पार
1: जिसनु दयाल होए मेरा स्वामी
0: तिस गुर सिख गुर उपदेश सुनावे तिस गुर सिख गुर उपदेश सुनावे
1: जन नानक तू मन के तिस गुर सिख की जो आप जपै अब रह नाम जपावे जन की तू

बने हो। सारस्वती बकता करके सारस्वती बकता करके जुग कोट गणेश के हाथ लखे हो जुग कोट।

अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है वाहे गुरु। अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबा है अगा है अमान है।

साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का पवित्र फरमान है, सिखां नूं गुरमत दे पूरने पा पा के दस रहे ने। अकाल उस्तत साहिब सचे पातशाह महाराज ने बड़ा पवित्र कवित्र रचिया, लिखदे ने बई संसार दी एक मनौत है ते सची, बई पंच बार गीदर पुकारे।

मैं ते परम गति सब तो उच्ची अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु नु मिलन दी जो है वो पाई है किस तरह साध संगत दे द्वारा। सो साध संगत ही वो टंग है, साध संगत ही वो विधि है, साध संगत ही वो रस्ता है जिसके द्वारा प्राणा दा नाथ प्यारा वाहिगुरु मिलता है। अगलिया पंक्तियां दे विच भगत गुरदास जी ये दसणगे कि साध संगत उन्होंने किवें कीती।

के निहन में परम गति पाले ही है। सब तो उच्ची आत्मक अवस्था अकाल पुरख वाहिगुरु दे मिलाप दी पाले ही है। भक्त रविदास जी दस जहन के मेनू ते सात संगत दे द्वारा ही प्राप्त हुई। बाकी दे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे विच वी इस आईडिया नू इस तरह सपोर्ट करदे हन, इस दे नाल सहमत हन, इस दे नाल इकमिक हन, अते ताकीद करदे हन के इंसान अजिज्ञासु अशीकर जे तू उस अकाल पुरख वाहिगुरू नू ढूंढना मिलना चाहना है जो कि तेरी जिंदगी का निशाना है तो सात संगत तो अलावा होर दूसरा कोई रस्ता नहीं। महाराज जी बाणी च इस तरह आखते हैं, कहते हैं

बहुत कमाल की गल बाबा जी बाणी चाहते हैं कि जो साधुओं का संघ है वह सिर्फ इत्थे ही काम नहीं आता, किसी होर दुनिया च भी काम आता। बाणी का प्रमाण सुनो, कहते हैं

साधु मित्र हन जिन्होंने ढूंढ सज्जन संत पक्या जिन्होंने पक्के हुए आत्मक जीवन दे विच प्रपक्ष साधुओं के नाल अपनी मित्रता पाई है, कहते हैं यह जड़े कच्चे हैं इन्होंने तो इत्थे ही छड़ जाना है। कहते हैं तुहाडी रूह नूं ओह खुआर नहीं होण दिंदे, तुहाडी रूह नूं पटकण नहीं दिंदे, साधु संत दोनों जहाना दे विच तुहाडी जो है वह संभाल करते हैं। इस करके साध संगत नालों वड्डा होर कोई टंग ही नहीं है भक्ति का। इस करके होर सारिया विधियां जड़िया हैं वह साध संगत के मुकाबले दे विच कुछ नहीं हैं। प्रेम नाल गाओ।

बहुत प्यारे वचन हैं। ये शब्द इतना इतनी प्रफाउंडनेस दे नाल भरिया पिया है कि असी इसनू अपनी जिंदगी अगर कमा लईए, इसनू वरत लईए, तो साडा जीवन भगत रविदास जी की तरह बदल सकता है। भगत रविदास जी कहते हैं, फिर मैं की कीता, जोई जोई जोरियो सोई सोई फट। जो भी अपने अंदर सुभा जोड़े हुए सन, सुभा पकाए हुए सन, इन्वेस्टेड हैबिट्स सन, कहिंदे उसनू मैं सारे नू सारे नू एक कचड़ा समझ के पाड़ दिता। जोई जोई जोरियो, असी कई दफा एक दफा किसी नाल नाराज हुंदे हां, फिर उसनू असी अपने अंदर जोड़ लेने हां, उस नाराजगी नूं फिर सारी उम्र रखते हैं। किसी ने अगर सानू कोई बुरा शब्द किसी वेले कह दिता है, वह फिर सानू सारी जिंदगी याद रहिंदा है। जदों भी उस परसन नूं असीं देखते हाँ, उस रेफरेंस दे विच्चों देखते हैं, उसे रेफरेंस दे विच्चों देखते हैं। मेरे नाल किसी ने बुरा किया है, उसनू असीं भुला नहीं सकते। कहिंदे जोई जोई जो रहे हो, अगर 10 साल पहला किसी इंसान ने कोई गलत काम किया है, वह सुधर भी जाए तो साडिया निगाहों के जदों असी उसनू मिलांगे देखांगे तो असी यह कहांगे सानू पता है 10 साल पहला किदां दा हुंदा सी। दिस इज अवर नॉर्मल बिहेवियर। 10-15 साल पहला अगर किसी इंसान का जीवन किसी होर किस्म का सी, जो कि बहुता एक्सेप्टेबल नहीं सी, लेकिन वो इंसान अपना जीवन बदल लेता है। उसने तो जीवन बदल लिया है, लेकिन लोगों ने ओपीनियन नहीं बदली अपनी। लोग उसनू यही कहते हैं कि जानते हैं असं इसनू 10 साल पहला की करता हूं। इसनू क्रेडिट दो, उसनू शाबाश दो कि इसने अपना जीवन 10 साल कितने का कितने ले आता है, बदल लिया है, ना कि तुसी उसे नू ही देखना है। बाणी दे विच एक साड़ी जो अवस्था है, साड़ी जो आदत है, उसके प्रति बहुत खूबसूरत लाइन महाराज ने दर्ज की है। कहते हैं, माखी चंदन पर हरे जह बिगंग तह जाए, माखी चंदन पर हरे जह बिगंग तह जाए। जेड़ी मक्खी है वह चंदन ते नहीं बैठती, उन्हू त्याग दिंदी है। जह बिगंग जिथे गंदगी है उथे जाके बैठती, उथे जाके बैठती। तो असी भी अपने जीवन दे विच किसी की खूबसूरती नू, किसी दे शुभ गुण नू जदों देखते हाँ, तो नाल दी नाल कोई उसका कोई ना कोई अवगुण जां कोई उसका पिछला कर्म जरूर देखने की कोशिश करते हैं। भगत जी कहते हैं, मेरिया निगाहां च मैं अपने अंदरों जो भी जोड़िया सी कहते सब पाड़ के रख दिता। अगर किसी नाल नहीं सी बनती तो उसनू जाके आप बुला ले। कोई अगर मैनू मैला लगता सी तो उसनू आख्या गले लगा के, भाई तू ही मैला नहीं, मैं तेतों भी खुद ज्यादा मैला। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटो। जेड़े गलत सुभा पक चुके सन, आलस का सुभा गलत है, निंदा का सुभा गलत है, चुगली का सुभा गलत है, होमे का सुभा गलत है, उच्चा बोलन का सुभा गलत है, कौड़ा बोलन का सुभा गलत है, ये सारे पक्के हुए सन। कहिंदे ओ सारे दे सारे मैं, दिस वॉज द सैकेंड इफेक्ट ऑफ द साध संगत, कहिंदे मैं ये सारे दे सारे फौरन पाड़ सिटे, डिले नहीं कीते। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाट्यो, झूठे बंज उठी ही गई हाट्यो। वह कहते जी झूठ की दुकान खोली उसी मैं, वो उठी गई है, खत्म ही हो गई। अखीरली लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही अर्थपूर्ण है, जिस दे विच भगत रविदास जी आखते हैं, पहला उसको सुनो फिर उसका असं अर्थ करांगे।

अनक जन्म बीती अन परमाई, अनक जन्म बीती अन परमाई, कर वासना देवे दुत्तर माई।

0: जल चढ़ाओ, फिर रंजन मचाओ,
1: सिख सिख गुरु बिचाओ, नदी कंगाई पाओ, चक्कर चक्कर चल चल बदल भक्त नाम का समाधान जगाओ।

0: हर नाम निदान है।
1: गुरमुख पाया जाए
0: तन मन शीतल हो,
1: शीतल हो, हर हर नाम निदान है।

महाराज के दरबार विच ताऊस सरंदे ते रबाब बजा के इना रीतां दा कीर्तन सतगुरु दी हजूरी च हुंदा रहा है। ये पुरातन रीत श्री हरिमंदर साहब दी ये भेंट है।

दीप कपरदास कटे प्रीत ना पतंग की उस समास जैसे त्रिपत ना मध्यप को उड़ते आकाश आस कटे ना बिहंग की कटाकन को

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पईआ जिवें कोई ढोल वजा के निशान लै के उस दे मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण ओदे नाल मिल पईआ। मिलो गोपाल निशान बजाए, मैं दुनिया दी उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया दी परवाह ना कर दी होई उस दे मगर लग पईआ। हुण मैनू ओ दाता मिल पिया, मैनू किसे दी परवाह नहीं। भगत जी कहंदे ने

श्री गुरु गोविंद सिंह कर करना पाए भले मग चारो वरना जेड़ा सिख अपने गुरु का शुकराना अदा नहीं करता। भाई साहब आखते ने उस वर्गा नीच ते अकृत कण दुनिया ते नहीं मिलेगा। कलगीधर पातशाह जी ने तैनू कीड़े तो पातशाह बनाया, किन्ने उपकार हन तेरे उत्ते। ऐ गुरसिख कदी तू कलगीधर पातशाह जी का शुकराना अदा कीता है? अज गुरु रामदास अपने गुरु का शुकराना अदा कर रहे हैं, अपने आप नूं कीड़ा दस रहे हैं। तू कितना कुछ शुकराना अदा करने है? हजूर आखदे ने भाई साहब भाई संतोख सिंह जी

जैसे अपराधी अवर कोई राखे, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ा। तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर

मांगो राम ते इक दान, आई बेग फॉर वन गिफ्ट ओनली फ्रॉम द लॉर्ड। मे ऑल माई डिजायर्स बी फुलफिल्ड मेडिटेटिंग ऑन एंड रिमेम्बरिंग योर नेम। ओ लॉर्ड, पॉज। मे योर फीट अबाइड विद इन माई हार्ट एंड मे आई फाइंड द सोसाइटी ऑफ द सेंट्स। मे माई माइंड not be afflicted by the fire of sorrow. May I sing your glorious praises 24 hours a day. May I serve the Lord in my childhood and youth and meditate on God in my middle and old age. O Nanak, one who is imbued with the love of the Lord is not reincarnated again to die.

अकाल पुरख को किस वास्ते मंग रहे हैं? साढ़े वास्ते मंग रहे हैं। साढ़े वास्ते ही महान वड्डी दात शुभ कर्मा देह शिवावर मुहे के है। शुभ कर्मन से कम हूं ना करो, शुभ कर्मा शुभ कर्म ही सबको बचेगा। बाबा जी बची करते सब परमार्थ तो सदा ही पवित्र है निर्मल। परमार्थ सदा ही पवित्र और साडा विहार ये पवित्र होना चाहिए। विहार निर्मल होना चाहिए, परमार्थ का सदा ही निर्मल। जिसका विहार पवित्र है, विहार सच्चा से सच्चा हो गया, उसका जीवन विहार हो रहा है, दिखावा हो रहा है, वो फिर असली जीवन में बनावटी जीवन। तो शुभ कर्मा की विशेषता है सबको ज्यादा। शुभ कर्मा वाली दुनिया में कामयाबी दुनिया भी सत्कार कर दी है। जिसे को शुभ कर्म तो अजकल भी दर्शा जी असा कलयुगी जीवां दे वास्ते अकाल पुरख दे के अरदास कर रहे हैं। दे शिवावर मोहे के है ते ये भी कहते हैं कि कलगी दर सतगुरु जी ने शिवजी महाराज की अरदास की। सबने शिव नाम जो है वो अकाल पुरख जिन्हों लोग शिवजी कहते हैं, असली उसका नाम महादेव है। सतगुरु जी ने आप फरमाया है, महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न भेद। महादेव नु लोग शिव कहते हैं, वो इस वास्ते जेड़ा सिमरन करने वाला हो, रब की बंदगी करने वाला, लोग उन्होंने कह दें भाई ये तो रब रूप ही, क्यों रब नाल जुड़े। इसे तरह महादेव नु शिव जी किया जाता है, पर असल में शिव नाम अकाल पुरख। उस अकाल पुरख के अगे कलगी सर दशमेश पिता जी ने ये अरदास की थी, ते ए वर मंगे है, दे शिवा वर मुहे के है। कर्मन से कम शुभ कर्मा की दात साढ़े वास्ते, जिन्होंने शुभ कर्मा की दात प्राप्त कर ली उन्होंने गुरु दिया मेहर उन्होंने दुनिया जय जयकार। अज मेरे कलगीधर सच्चे पातशाह जी साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी बाबा फतेह सिंह जिन्हों फतेह हासिल हुए धर्म की तज खड़ी कर दी। आखो श्री राम, धर्म का बोल सदा वास्ते चढ़दियां कलां विच फतेह प्राप्त। नासवंत पदार्थां नाल प्यार नहीं किया, अमर वस्तु जो सी धर्म उसनों अपनाया। जिहदे कोल धर्म है उहदे कोल सब कुछ, धर्म ही सब तों वड्डी दात। जिहदे कोल धर्म है भाई उसका जीवन सदा वास्ते सफल। धर्म धर्म नाल प्यार कीता, इस नासवंत शरीर नूं कुर्बान कर समझिया, इसने तो बिलकुल इसने तो दिन बिन सी जाना है। तो धर्म संगीत